बर्फनि बेलायखै क्राक आक्रमणनि बागै जार्मननि बेलाय मुंसित्रांजा कदरमा जबाख्लानाय जाहाज युद्ध जाहाज रुंकतर्न बिस्मार्क अवनति एकलग्रेर आक्रमण खालामनि बागै सिनजन रमनाय आमिं मिकी माउस अवन जतन टीवी नाइ खेंके और कार्टून सिनेमान जतन सिनेव वर्ल्ड डिस्नी सिनामजाक और कार्टून नि नाइथकों जतन हमजाके मानाय लेयो 1933 ख्रीष्ट बिसियो तिनी हाई सालन मिकी माउस ने

0: আর কিছু তাক বুক এফএম উজ্জিন তুমল হাই হাই হাই
1: প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाशप्रभाकरनावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्।

नि आमचाय नायकल फांगताय टंक संलुकुरक गदालमुंग बाय कायसा गोबां बेरेमनि ब्रै पॉइंट रोगजाक नायमथांग्रि सिनामतिसाना कबक मुंना रोखा मोजांसा हास्तेनि बेबा खामग्रायनि ककनतुयै मन्त्रियक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा मिया दिल्ली गतालो मन्त्रीबख्रक नरेन्द्र मोदी बाय सबाय शुक्रबुयि ककलाम सालायका मन्त्रियक्रा हदाला मसाका त्रिपुरानि हामग्राय गाहाम नायकल मुंतै मथानि जुदा जुदा बाबायनो तुयै मन्त्रीबख्रक बाय ककलाम सालायमा चासामुंगनां ओंखा मन्त्रियक्रा मन्त्रीबख्रकनो आमा त्रिपुरा सुन्दरी मान्डबनि मांगप्लि सका जियाफारका बतै बसाका प्रसाद तांबोतांनि सेबबाय मान्डब नख्लास नाम तिसा जाकमाबाय त्रिपुरा सुन्दरी मान्डब बेरायनायतै तंथान स्नामखरते बानिया मन्त्री सान्तना चाकमा मिया पेचाथलनि नवीन छरा आमचायो फेरांकगै बुता बाहानक थैजानाय नुखुंनि लुकुरकबाय थांगै मालायखा हास्ते देरामुं कासुमुं तहबिलनि बखाकतै खक थाम रासाय चारचि साय रांनि कनै गसिमुंब्लाय थैजानाय नुखुंनि यागो याफारि रेखा आरो बिनि लगे तंमानि कुमारघाटनि बारजा मान्जाक बखाकस्ते नायकलफां डेभिड एल हालाम पेचाथल ब्लकनि भिडिअ नबारन चक्रवर्ती आकसं हास्तेनि हुकबार ख्लायनै रकनि रांथं हामग्राय ख्लायनाव मिया दिल्ली गतालो केन्द्रनि हुकबार हामग्राय मन्त्री शिवराज सिंह चौहान बाय मालायखा हास्तेनि हुकबार हामग्राय मन्त्री रतनलाल नाथ ककलाम सालायमाव हास्तेव हुकबारक गताल तांबेख्रेब संसायतिसाना तै हुकबार ख्लायनाय रकनि हामग्रायनो तैयै ककलाम ओंखा हुकबार मन्त्री मोजां नाथ साका ककलाम सालायमा सासामुं गोनां ओंखा मन्त्रीबख्रक नरेन्द्र मोदी अ तालनि थामचिसा सालमारि ककतिसालनि फुंदामचिसाव आकाशवाणीनि मन की बात पान्दानि बिसिंतै हाकतरतै बुहाकतरनि लुकुरकबाय ककलाम सालायानो अब ओंगानो मन की बातनि फिल्डसारा थामचिब्रै बेरेमनि पान्दा मन्त्रीबख्रक लुकुरक नबरकनि वानसकमा खाकामानि कक मन की बात रहरनानि कबकमुं नारेखा माई गभ अपेन फोरम एबा नमो एप्सआव लुकुरकनि वानसकमुं रक्न रहरै मानबायानो टोल फ्रि नम्बर 1800117800 अ नम्बर कल खायै हिन्दी एबा इंराजी बाय वानसकमुं रक्न रेकर्ड खालाय मानबायानो आबनो कारिब 1922 नम्बराव मिस कल दिबै जे लिंक मानानो आरो ब एसएमएस खालाय मानबायानो फोन लाइन अ तालनि बोसकां साल नैजि चुकु जरा फियगजाक तंगानो हास्तेव सीएनजीतै पीएनजीनि मरकमारी बांखा त्रिपुरा नेचुरल गेस कम्पानी लिमिटेडनि मेनेजार पृथ्वीराज भट्टाचार्य ककमुं गायसाव साका सीएनजीनि मरकमारी सालथां त्रिपुरा हांकर तिनि निसिमि केजि थगै खकनै बांगै खकसार चिसनि लेपचिबा ओंगानो गुमति हांकरब खकनै बांगै ओंगानो खक चुकु चिसा लेप चुकु चिबा पीएनजीनि मरकमारी सालथां त्रिपुरा हांकर युनिट थगै ओंखा खक ब्रैचिबा लेप चारचि चार गुमति हांकर ओंगानो खक ब्रैचि चुकु लेप चुकु चिचुकु स्टेट लेभेल बेंकार्स कमिटिनि लीड बेंक्स पान्जाब नेशनल बेंकनि जतन बाय मिया आगरतलाव मेगा क्रेडिट आउटरिच प्रोग्रामाव जुदा जुदा हाफांनि तांबोतांनि बिसिंग कायचि साय सारा दगचिनै एकाउन्ट बेबागै खक ब्रैरा चिचुकु रोजाक चिसा रासायरांनि लागाय गसिमुं कांग्लाय याफार जाखा अ लाकायरंनि बिसिंग खुर्सा जाखनाय ओंखा मुद्रा यजना पीएम स्वनिधि पीएम इजिपि पीएम विश्वकर्मा आकरक एमएसएमइ किसान क्रेडिट कार्ड एसे जिनखबै जुदा जुदा लाकाय ताबुं नबारतिबारनि ककतुमा बोसकां दाम नैचि ब्रैयो हास्तेनि बेबा खांकर दामो ब्रैचिनि सिमि बाजि किलोमिटार दबै नबारबातैबावै मानहनै हजाक मंग्रोखा नबारतिबार नायखुं दिनै सालनि साखानि तंमारि 32 डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगानो आगरतलाव दिनै आइचुक बुखाखौ खामानि तंमारि तंमानि 2.4 डिग्री सेल्सियास आइचुक जरा वातै वाखा 2.2 मिलिमिटार ककब्रक बाय ककमा परिमं ताबुक जरातै अरनपायखा उलनि ककतुमा आवाय इंगानो सानजा दामसिनि तामै सती ब्रैचिबाव

नि माइके साङ दिब्र चाया बोले कक्षी कन छाया बुझे जा था गए बुझे था गए था वो बुझे कके चेने तंगिया तुमने माइक सांग दी बुरा चाया बोले कक्षी कौन छाया बुझे जा था गए बहुत है बस हाँ वो बुझे कक्षी कौन तंगिया तंगा तिन्हाले बिनी खाकरे सांग न साजोंग ना पाया।

रखने दंग सारा पॉइंट मेगा हार्स एफएम उज्जैन स्टूडियो आजुक आं विनोदा खाला दंग खाने रचापुंग पांडव नरकनी खनाकमा रचापुंग रोक फायदे अजराव सबता हरका नायलायनाय रचापुंग कक्ताय इंखा खातिजाक निनी बागै रचापनाय विमल देवबर्मा बाय रचाप जाक आं नरकनी दाखुक ब्रेकवार जलानी ब्रिजेस फुंकाहाम हंके फुंकाहाम ब्रिजेस नो हंके अजराव रचापुंग खनालायनाय दाखुक ब्रिजेस नि खनातक जाक मानि रचापुंग दाखुक विमल नि खरां बायखे रचाप जाक खातिजाक निनी बागै हंके खनादि दाखुक ब्रिजेस नि खनातक जाक मानि अ रचापुंग तैजो तमारे किचिं संनारावबो खनादि अ खनातक रचापुंग।

गेजेरावबो दाबो खोनाय लायफिनाय साबता मुसिहरखा हेलो बाय आंनो रोजाबपुं खोनारि दि रोजाबपुंनि ककथाय ककबिति सानाय सिंगार स्मृति तै अभिषेक देवबर्मा आनि मुं विशु त्रिपुरा गामि उत्तर सुनायछुरि बिलुनिया हामबाय हिंगे रोजाबपुं खोनानाय हिनि गहरखा ककबिति सानाय हिंगे खोनादि निनि खोनाथक जाखमानि अ रोजाबपुं दा ककबिशु

अवैध जराव ताबु खानाले नै ताबु सुजरा मानमानी कोगुरो कोक्तुमा पुबाग्रो राष्ट्रपक्र द्रौपदी मुर्मु तिनि चीन आरि गानानि आमचाइ नाथु लापास बेराइमाव थांगै आरो ते आरोनि मुर्गमाव दंजाक सेंग्राक रोगबाय कक्लाम सालायन हास्तेनि बेबाग हामक्रायनि कक्नो तुयि मन्त्रियक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा मिया दिल्ली कताल मन्त्रिबक्रं नरेन्द्र मोदी बाय सुबाय शुक्रबुइ कक्लाम सालायखा मन्त्रिबक्रकनि पीएम ओवानि तांगबतांग लुकु हामक्राय रोगजा कतर सिलाय मुंग तुबुखा डिपार्टमेंट अफ टेली कम्युनिकेशन कताल सेबो लेपटप ते जुदा जुदा डिवाइस किउ आर कोड शेप बाय लाइटेस हाके लग इन खाई माननाय हास्तेनि हुकबार खाइनाय रोगनि रांथं हामक्राय खाइ नाव मिया दिल्ली कतालो केन्द्रनि हुकबार मन्त्री शिवराज सिंह चौहान बाय मालाख्या हास्तेनि हुकबार मन्त्री रतनलाल नाथ कक्लब गोरों काजी नजरुल इस्लामनि फिल्डसारा नैजिस्नि आजाइमा साल मिया हास्तेयावबो जुदा जुदा बान्दानि बिसिंतै पालाय जाखा सुनामुरा टाउन हल संसार जाक हास्ते बेरेमनि बान्दानो चेंगै रेखा कुचुग्रों मन्त्री किशोर बर्मन स्टेट लेभेल बेंकार्स कमिटीनि लिड बेंक पान्जाब नेसनेल बेंकनि चेतन बाय मिया आगरतलायाव मेगा क्रेडिट आउटरिच प्रग्रामाव जुदा जुदा हाफांनि दांबोथांनि बिसिं कायजि साय सारा दगजिनि एकाउन्ट बेबागै खक ब्रिरा चिचुकु रोजाकजि सा रासाय रांनि लाखाय गसिमुं गांबलाय याफारजाखा स्नाम खरते बानिया मन्त्री सान्तना चाकमा मिया पेचारथलनि नबीन सरा आमचायो फेरां गगै बता बाहानो थैजानाय नुखुंनि लुकुरक बाय थांगै मालायखा बिस्कांदाम नैजि ब्रैयाव हास्तेनि बेबा खांकरो दामो ब्रैजिनि सिमि बाजि किल'मिटार द वै नबार वातै वाइमानो होनै हजाब मुंरोखा नबार दैबार नायखं आशोक जराते खोनाबायखा दाबो सुजरा मानमानि गगबर' कक्तुमा बुबाग्रौ।

0: मोकल निमुक भी हुला हाँ गुरुदेव रानी कोमला देवी निमुक मोवाई अंग बहाय की बखाती किसनाए अंग बहाय की बखाती किसनाए
1: रानी कोमला देवी भोनी खाक रानी सुई बाई गुथार कोमला तो इशनावई भोनी गुथारुनी बांगई मुक मुक लांका
0: गुरुदेव अंग तो माखला इशनाए
1: महाराज रानी कोमला देवी भोनी खाक रानी सुई न रहोई इनी देश नी प्रजा रखन मुक्ति नी नामक लांखन था
0: गुरुदेव
1: निराज अंदर मोहन नगु कुदुन खाय कांखा महाराज रानी कोमला देवी थिया बोनी मुंग कोमलिया
0: गुरुदेव
1: जो जो रमई बनी मुंग के थांग तो नाय राजा धन्न मारी के साग नी खरान को तो नी मुकु मु थिया साग तो नाय बोनी याक पर उले कोमला सागर हाजी हाजी तुम जतन रानी कोमला देवी मुंग दे छुई लाइसनी
2: जय महारानी कोमला देवी की
3: जय।

जों दाल बिदाल पान्दाव दाल बिदाल रचापं खाना लायथों खाख्लायन रग जतन एनजे खेतों खना और रचापं रग नहाय दा खना तो तक रचापं जेफ्रु बन रग नि बागै पान्दा पुलानि सिमि पाइथाक जरा जों खाना लाय हंके दिनि तो स्रां साल हंके जों पुलाव तो खानि रचापं पान्दाव न रग नि खना तक जाक मानि रचापं जों खाना लाय हंके ताबुक जों दाल बिदाल पान्दाव दाल बिदाल रचापं खाना लाय तों लाय हंके ते स्राबसानि यागुल हंके जों न रग नि हामजाक माचिनि खातों मा पान्दाव हायनो हायनो रग नि खना तक जाक मानि रचापं रग न जों खाना लायनाय हंकाय दामनि निसिमि सति थामजि जरा हंके जों खना तो खरां पान्दाव खना तो रचापं जों खाना लायनाय हंके बाहायखे न दामनि दामै सति थामजि जरा न रग नि गजारां दंनाय न रग न खना तो रचापं खाना रुव हंके न रग बा आनो लगिरि दं दि ट्यून खाय दं दि 101.6 मेगाहर्ट्ज एफएम उज्जैन तन हंके अचराव हायनो हायनो रग नि बागै खना तो रचापं वाशे उशु मकल बायबो बखानि कग्रग साजाखते हंगै थांगो हने रचाप जाक बेलाय नखना तो रचापं खाख लाइन रग जतन खना तक जागान रचापं खनाय दं दि लगे दं दि।

ओंकाय कुक दुक नासिंग ते नासिंग ते रचापुंग दा खना लायनाय ओंकाय रचापुंग फानो खनाय मानो साइमन या खरकसे खरकसानि ले खना तक जाक मानि ओ खम जागै फानो मान ब्ले ना ओंकाय कुक दुक यासाक नायने कुक दा साइमन हेलो हेलो किसा प्रब्लेम ओंखाना वातैनि जराबा ओंखाय फायदि रोजाब ओंखाना लायनाय अजनाव खाख्लायो ओ रोजाब मुं खरकसे खरकसानिले खरादक जाक मानि ओ खब जागै फानो मानो ओंखाय खनादि खनाय दंदि दै लगि दंदि अखनादा दब रोजाब मुं नरकनि बागै

जों खोनाथथ' खरां बान्दाव खोनाथथ' रोजाबमुं खोनालाय दङ गं ब्रब रोजाबमुं खा ख्लायाव जे रोजाबमुं आं नरकन' खोनालि दङ नरक जतन' खोनाथक जा बायखोना एन्ट्रि खाय दं खोना तिरुक तिरुक जरा थ' थाङै दङ जे मानसा गां नरकन' गोबां खे जरा किसानि बेर' बोसोर जराते रोजाबमुं गोबां खोनारि मानाव आबुन आं जाय दङ आबुनि बागै आं गोबां कक सायाव ओइ रोजाबमुंनो गोबां खोनारोव ओंखाय अजराव फायदैहायनोहाय तेतांसा खोनाथथ' रोजाबमुं जों खोनालायफिनाय जरा तिरुक तिरुक थाङै दङबा ओंखाय नरकनि बागै खोनाथथ' रोजाबमुं खाख्लायाव रोजाबमुं नंगौ नरक खोनाथक जाबायानो खोनायदंदि लगिदंदि

0: अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली।
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं ना।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता

0: पारित यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित

कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।